0: भैया जी बताओ ना, आप हो कौन?
1: मैं वो था जिसकी तबाही की गवाही अखबार का पन्ना पन्ना देता था। फिर एक दिन वो मिली, जिंदगी पहली बार।

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, पाते हैं कड़ी मेरी लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

जो मैं नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

धीरे धीरे तेरी आंखें बदलने लगी, तेरी बातें भी कम होने लगी। जो सुकून पहले मिलता था अब वही सांसें भारी होने लगी।

दिन जब तूने मुड़कर देखा भी नहीं, जैसे मेरी पूरी दुनिया रुक गई, मेरे लफ्ज वहीं रह गए।

बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया, और जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। फ्रॉम द टाइम यू मेड मी फॉल इन लव विद यू, एवरी अदर पर्सन हैज गॉट अ स्टोन इन हिज हैंड अगेंस्ट मी। यस, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा। संग मीन स्टोन, ऑफ कोर्स इज अ फारसी वर्ड। और बेदर्दी तेरे प्यार ने दीवाना कर दिया। एंड बेदर्दी, ओ हार्टलेस वन, योर लव हैज मेड मी क्रेजी। एंड जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है, संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है। यस जाकिरा, यू हैव गॉट इट राइट। इट्स अ फादर एंड सन टीम, अमीर एंड उस्मान मीर। अमीर एंड उस्मान मीर की आवाज थी। शुक्रिया भाई सैफुद्दीन साहब, मोहब्बत है आप लोग की, दैट यू हैव ट्यून्ड इन। एंड देन वी हैव our Pran Mahabir, one of our regulars, also always listening to us as well. And then we have Asha as well, and Arisha of Malvin. Thank you so much. Anil Ram Surup, one of our regulars as well. Our Sade Sad Hamara Rahim Sheikh Saab and Logan Archery as well. To lead your program to aage badhate hai.

बड़ी बेहतरीन गजल है, इतनी बेहतरीन अंदाज में इन्होंने इसको पेश की थी कि मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम न देना खुशी देने वाले, दोज दैट गिव मी लव इन माय लाइफ प्लीज डू नॉट गिव मी सैडनेस, यू आर द वन दैट गिव्स मी ऑल द लव इन माय लाइफ। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले कभी गम ना देना खुशी देने वाले, और मेरी दिल की दुनिया है तेरे हवाले, एंड माय एंटायर लाइफ माय हार्ट इज इन योर हैंड्स, मेरी दिल की दुनिया है तेरे हवाले, कभी गम ना देना खुशी देने, डोंट एवर गिव मी प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच टीना नाइक एज वेल, आई सी यू एंजॉयड दैट म्यूजिक। और साथ ही साथ हाफिज शाहिद मियां एज वेल, एंड देन वी गॉट इंद्रानी Carnegie and of course Vasanti as well, our regulars will always listen to us. Thank you, shukriya, meherbani. To lijiye program ko aage badhate hain, aur jaise aap jante hain, you are listening to Lotus FM and it is our Urdu language show Guldasta.

सिग से पड़ गया रे तुम्हारा पाला, तुम्हारी सूरतिया पे मर गए, प्रेम की मूरतिया पे मर गए, कहीं खोना दे तुमको जानम ये सोच कर ही।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना, नहीं जाना है तो माना, नहीं मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं किसी से भी।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसने है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।